0: सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियों।
1: यो मीठो सुगन्धले मेरो मन एकदमै